मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों होम।

ड्राइविंग कोशिश करो स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन आईफोन दाता समझ वही हो फुल सर्विस का मैसेज ओके दे या ओके ना दे आवाज का खबर है खबर ये लो ट्रैक नंबर 4 तलाना शहर 0938 280 4

0: मुखर्जी नेक्स्ट कॉलर गुरु सोकर आज देखम जरा अस्सलाम वालेकुम जी
1: सलाम
0: पखैर ना पखैर सोकर लकम जैना जी
1: ज़
0: आलिया खबर ही कहो ना खबर ही कहो ही कना माँ कुछ कम देना मने कड़ी नहीं हूँ
1: तब सपोज को माँ तो हुई
0: ना खा खा खा खा आलिया तो कम जैना आलिया बीबी
1: ना सिर्फ आलिया
0: खा ना ज्यादा जी ना कौन मुन सर्च कम देना बीबी हम लगे दली का ना नोस्ता नुम सर्च कम देना बीबी नहीं लगे दल सा
1: ना सिर्फ जमान नुम सिर्फ आलिया दिया
0: आलिया खबर ही कहो ना खबर कहो कना माँ कुछ कम देना मने कड़ी नहीं हूँ
1: सपोज को माँ
0: तो हुई ना खा खा खा आलिया तो कम देना आलिया बीबी
1: ना सिर्फ आलिया
0: खा ना ज्यादा जी ना कौन मुन सर्च कम देना बीबी हम लगे दली का ना नोस्ता नुम सर्च कम देना बीबी नहीं लगे दल सा
1: ना सिर्फ जमान नुम सिर्फ आलिया दिया हुआ
0: ना सिंगल नुम दे लगा।

एक मरतब फिर मैं आप लोगों को ताहिर जमान वेलकम कहते हैं जी। एंड साथ साथ याद रखिएगा लिसनर्स, जिंदगी में कोई शख्स सिर्फ शख्स नहीं रहता, वो रहता है एक आदत बन जाता है, एक ऐसी आवाज बन जाता है जो खामोशी में भी सुनाई देती है, वो सामने ना भी हो तो भी दिल को लगता है जैसे आसपास ही है। इंसान दुनिया हजारों चेहरों को देखता है, लाखों लोगों से मिलता है, बहुत सारे नाम मतलब इंसान सुनता है, बहुत सारी बातें करते हैं, मगर दिल अजीब चीज है जी। इससे जिस एक इंसान में अपना सुकून मिल जाए ना, फिर वो उसी एक चेहरे, उसी एक आवाज, उसी एक लहजे के गिर्द अपनी दुनिया बसा लेते हैं। फिर चाहे जो है ना फासले कितने ही बढ़ जाएं, वक्त कितना ही गुजर जाए, मसरूफियात कितनी ही बदल जाएं, दिल किसी को मतलब आता, दिल किसी खुश को मतलब महसूस करता रहता है, उस इंसान को, उसके वजूद को महसूस करता रहता है, जैसे पहली मुलाकात के लम्हे में था।

और लिसनर्स, मैं कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ आप दोस्तों से, आप लोगों से इजाजत भी लूंगा, क्योंकि मेरे पास टोटल 20 मिनट का टाइम है और फिर मैंने इसके बाद इजाजत लेनी है। और शायद इसलिए इंसान किस चाहने से ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मोहब्बत याददाश्त का नाम नहीं है। मोहब्बत तो दिल पर लिखी हुई है, जिससे वक्त मिटाने की कोशिश तो करता है, मगर हर बार उसके हरूफ और गहरे होते चल जाते हैं। इंसान खुद को समझाता है कि अब बस, अब आगे बढ़ना है, अब उस शख्स को भूल जाना है, अब उसकी याद को दिल से निकाल देना है, मगर अजीब बात यह ना लिसनर्स के, जिसे दिल से निकालने की कोशिश करो, वही शख्स हर खामोशी ना सुना उसने, हर तन्हाई और हर टाइम हर खामोश लम्हे में पहले से ज्यादा याद आने लगता है। उम्र गुजरी है, कोई गाना बजता है तो वो याद आता है, कोई खुशबू महसूस होती है तो वो याद आता है, रात खामोश होती है तो वो याद आता है, बारिश की बूंदें खिड़की से टकराती हैं तो वो याद आता है, और कभी कभी तो इंसान बगैर किसी वजह के भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो शख्स अभी तक जिंदा होता है। मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, इससे पहले मैंने ट्रैक शामिल किया ना, तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये उस कैफियत का नाम है जहां इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता कि वो कब किसी के करीब होते होते खुद से दूर हो गया है, कब किसी की बात अपनी बात लगने लगी है, कब किसी की खुशी अपनी खुशी बन गई है, कब किसी की नाराजगी अपने दिल पर बोझ बन गई है, कब किसी की खामोशी ने अपनी रातों की नींद छीन ली है, नींद चुरा ली है, पता ही नहीं चलता। मोहब्बत शायद यही तो है कि इंसान दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, अपनी जिंदगी का एक एहसास समझने लगता है। और मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरे स्वीट लिसनर्स, मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि, और मेरे अजीज सामईन, आज की ये बात शायद जो है ना आपको इसलिए भी, ये सिर्फ एक आरजे और सामईन का ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इतना नहीं है कि मैं यहाँ माइक के सामने बैठूं, आप मेरी आवाज सुने, दो चार बातें करूं, कोई गाना सुनाऊं, कुछ हंसूं, कुछ मुस्कुराऊं और फिर प्रोग्राम खत्म हो जाए। मेरे लिए तो ये रिश्ता आवाज का रिश्ता है, ये एहसास का रिश्ता है, ये इंतजार का रिश्ता है, एक दूसरे को महसूस करने का रिश्ता है लिसनर्स।

याद रखिएगा मेरी बात कि एक आरजे आता है, एक प्रेजेंटर आता है, एक ब्रॉडकास्टर आता है, एक आरजे आता है, अपना प्रोग्राम करते हैं, अपनी बातें करते हैं, गाने सुनाते हैं और सुनते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी उदास बात करते हैं, और फिर वक्त खत्म होने पर माइक बंद करके चला जाता है। बज़ाहिर ये एक रोजमर्रा की रूटीन है, लेकिन सामीन रेडियो की दुनिया में कुछ रिश्ते रूटीन से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आवाज जब रोजमर्रा

ओके दाबी से सलाम को खोजाने क्या हाल है जी हाल ठीक ठाक है शो नाइस है मेहरबानी थैंक यू खोजानी आपने कभी प्यार किया है बहुत सारा प्यार मैंने किया है अभी भी मैं प्यार में हूँ आप लोगों से प्यार करता हूँ अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूँ अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ आगे है ये सवाल आपको बुरा लगा तो सॉरी मुझे कुछ बुरा नहीं लगा सवाल करना आप लोगों का हक है आप सवाल कर सकते हैं और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आप लोग मुझसे कर सकते हैं हमारे को खोजानी जैसा कोई नहीं था ना कोई है और ना कोई आएगा सलाम टू ऑल लिसनर आपको और सीमा गुल को स्पेशल सलाम जी सनम फ्रॉम अटक से थैंक यू सनम आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया और सीमा गुल अगर हमारा आवाज सुन रहा है तो सीमा गुल सनम का सलाम जो है वो कबूल फरमाओ सलाम वालेकुम सलाम स्वीट बाई ब्यूटीफुल आवाज ओके दे सना फ्रॉम चोपाई सना संगे नंग अपडेट नंबर में देखो लिखा नंद मैसेज के अपडेट नंबर वे लेवे गना रिश्ते में दर दर के बोलो सलाम जमा हम यो माहम से बिना लेमा वालेकुम सलाम सलाम बिलाल भाई मैं आहनी है द गदुन ना आवाज दे ओके दे और वही से अक्सर थे सलाम नवाई अक्सर सलाम ने कबूल कहा अलाउद्दीन भाई संगे आवाज ओके दे खान सवरूज जमा वो भी मेरे थोरो मैसेज बरा मखिलर अगले अमरीन सलाम थुलु सलाम मोटू जताले मोटू खैर मस्त आवाज क्लियर दे मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो आती गादक से आवाज ओके मेहरबानी थैंक यू सलाम भाई जान सलाम भाई जान वालेकुम अस्सलाम भाई जान सलाम भाई जान अलग अलग पसंद डायलॉग थे सलाम भाई जान संगे जसाइरा नूरियमा तैयार हुसैन मासरा मासरा मरवा बिलाल हुंदा अब तासुल सलाम हुई मुंग हुमा यादवा पीजी भाई ठीक सोला सैरा नूर तासु भाई यादुम खां मरवा था मरवा अवे उगे दे अरवा अजमद युमा मालूर दो वरकू थे दगन दागी नुम मरवा दे जाचे कल राशिन अगर वाने के नुस मंगा कूर की ओर तावास के चिमरवा और उगे दे अरवा के न कलारा सलाम हसन की आवाज ओके शो इज द बॉक्स वाला रानी मा रानी वेलकम रानी परुन बल्कि यू मैसेज रागले बल्कि दासी द रेडियो यू आवृधुन के चैकिल माय ड्यूटी आवाला करे रा वही चेरा रानी पर मुख्तलिफ प्रोग्रामात के जगम दे कॉल्स के आउ दासी नो डी आवृधुन के चैकिल मुख्तलिफ प्रोग्रामात के कॉल की मेल खबल कार दे कॉल दे गई खबर आला मैं चदा सुख सुख लगे माथा बिया द लिस्ट माथा लग बराबर गई अजीब खबर है द स्टार्ट के बा हमेशा कटिंग राजी मणखानी से के वसरदा जमंगा बिलहुदा आवाज में और असलाम वालेकुम भाई

0: back, right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break. We'll be back,
1: right after. जिंदगी एक जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. कुदरती शिफा, दिल से दुआ.
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुनना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा.

आप सुन रही हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: सहाफी ने जर्गे के बारे में कुछ लिखा था फेसबुक के ऊपर और उस बेचारे की पोस्ट पे बमुश्किल 25 लाइक्स भी आए थे। उस सहाफी का उसकी गाड़ी चला दी, उसके घर को दरबदर कर दिया, उसके घर वालों को, और उसको सजा दे रहे हैं कि उसको हम मारेंगे इसने जर्गे के खिलाफ बात कैसे।
2: लीटेस्ट फैमिली को आप देख लो, वहां पर हम लड़की को किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं? अगर हम उसको स्कूल भी अच्छे स्कूल में भी भेज रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि वो इतने तक पढ़े ताकि वो अच्छे खानदान में उसकी शादी हो।
1: बहुत ही ज्यादा डरे से हुए हैं औरतों से कि वो मार देते हैं आखिर में आके, या ये क्या कौन से फैक्टर्स हैं और इसको हम बदल कैसे सकते हैं?
2: तो एंड्रू टेट को हम इसलिए बहुत पसंद करते हैं, एक तो वो औरत को बहुत कमतर समझता है।
1: मिसोजिनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही खास है। खास इसीलिए हैं कि जब स्टार्ट में मैंने ट्विटर स्टार्ट किया तो इनको मैं ट्विटर पे सुनता था और इनके स्पेसेस में जाता था और वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी। इनसे मैंने नई चीजें बड़ी सीखी थी और मेरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, सिंस ये भी यूसुफजई है, मैं भी यूसुफजई हूं, तो हमारा वो जो कल्चरल कनेक्शन है वो काफी ज्यादा है। सो वेलकम नादिया
2: टू द
1: पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो कि आप काफी बिजी होती हैं, मैसेज का जवाब भी आपका दो दो तीन दिन बाद आता है। नादिया मुझे बताएं कि मुझे जहां तक इलम था आप पहले कनाडा में रहती थी, अभी आप इधर आई हैं, तो ये कनाडा से इधर क्यों आई आप? यहाँ से तो लोग कनाडा जा रहे हैं, यहाँ नहीं, क्या वजह?
2: अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती हूँ कि मैं कनाडा से यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे कोई इतना अच्छा औरतों के लिए या बच्चों के लिए इतना अच्छा
1: माहौल है
2: या अपॉर्चुनिटीज है। मैं पाकिस्तान से बेसिकली द लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी वाज 2005 और उसके बाद प्रॉबली 18 इयर्स तक मैं पाकिस्तान नहीं आई थी। सो पाकिस्तान को मैं सोशल मीडिया के थ्रू जानती थी एंड सोशल मीडिया पे आई यूज टू बी वेरी एक्टिव एज यू नो। सो मेरे जहन में ये था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो वहां पर बेसिकली एक यू नो गोलाबारी हो रही होगी। बट एनीवेज दैट चेंज्ड लास्ट ईयर जब मैं अपनी अम्मी के साथ विजिट किया इन जून एंड आई रियलाइज्ड कि यहां पर इंसान रहते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज यहां पे, बहुत ज्यादा इश्यूज है, बट एट द सेम टाइम यहां पर भी लोग रहते हैं और रह सकते हैं एंड इफ वी वांट टू यहां पर हम काम भी कर सकते हैं। मैं कनाडा में चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम करती थी, आई वाज अ चाइल्ड प्रोटेक्शन वर्कर इन द मिनिस्ट्री। सो वहां पर ये है कि वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस। मैं ये नहीं कह सकती कि वहां पर सब कुछ परफेक्ट है, बट जब आप कंपेयर करते हो तो बिल्कुल जमीन आसमान जैसे वाला फर्क है। So I realized के you know why not just work here in Pakistan for child rights।
1: तो आप स्वात में पैदा हुई थी, राइट?
2: जी, मैं स्वात।
1: अच्छा, स्वात में पैदा हुई थी, आप मूव कर गई थी कैनेडा?
2: स्वात में पैदा हुई थी, इस्लामाबाद में कुछ साल रहे, फिर कैनेडा मूव हो गए इन 2000।
1: हमारे जो दोस्त देख रहे हैं वो बोलेंगे यार तुम्हें तो पता है तुम क्यों पूछ रहे हो, बट ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, सो यहाँ पे भी क्या मसरूफियत है? आप यू वर्किंग विद चाइल्ड राइट्स यूनिट?
2: जी,
1: फुल फॉर्म एनसीएच। आप स्वात में पैदा हुई थी, राइट?
2: जी, मैं स्वात।
1: अच्छा, स्वात में पैदा

0: होते हैं ना, आप मूव कर गई थी कनाडा व्हेन यू वर?
1: स्वात में पैदा हुई थी, इस्लामाबाद में कुछ साल रहे, फिर कनाडा मूव हो गए इन 2000.
0: हमारे जो दोस्त देख रहे हैं वो बोलेंगे यार तुम्हें तो पता है तुम क्यों पूछ रहे हो, बट ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ. अच्छा, सो यहाँ पे भी क्या मसरूफियत है? यू वर्किंग विद चाइल्ड राइट्स यूनिट?
1: जी.

0: ये कमीशन 3 इयर्स का टेन्यूर है और मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल में एंड ये टेन्यूर जो है वो खत्म होगा 2006 में एंड लेट्स होप वी कैन डू really good stuff for the children of Pakistan.
1: Acha main thoda sa janna chahunga ki how it is different to work in with Canadian government and to work with Pakistani government. Ek dusra behind the camera jab hum discussion kar rahe the na to aapne mujhe kuch thought provoking cheeze batayi thi, you know, birth certificate aur landmines ki taraf bhi hum jayenge, lekin main cha raha hu ki aap thoda sa ye government wali side se start kare, and then ye jo issues hain bachcho ke yahan pe jo ki puri duniya mein nahi hai, even Pakistan se jo worst countries hain wahan pe bhi ye issues nahi hai, thoda sa uske bare mein bataye.
0: Acha कनाडा के साथ कंपैरिजन हम इसलिए नहीं कर सकते कि लोग तो एक तो अफेंड भी बहुत ज्यादा होंगे कि कैसे हम यहाँ की कंपैरिजन वहां पे कर सकते हैं. पाकिस्तान में पॉवर्टी का बहुत बड़ा इशू है, सो देयर इज नो कंपैरिजन. आई वुड से हम 5% भी क्लोज वहां के जो सिस्टम है उस तक हम 5% भी क्लोज नहीं है. एंड डोंट कोट मी ऑन दिस, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, that's not why I'm saying 5%, but bahut bada gap hai, huge gap. Hamara child protection system wahan par almost perfect hai. If a child is even abused or neglected by their own parents, chahe wo prime minister hi Canada ka kyun nahi ho, we the child protection authority has the right to take that child away from them. हमें फिर कोई भी पॉलिटिकल कोई भी हमें चीज नहीं स्टॉप कर सकती. वी हैव दैट काइंड ऑफ पावर इन कैनेडा. तो यहां पर तो हम बेचारे बच्चों को स्ट्रीट्स पर देख भी रहे होते हैं, उनकी हम हेल्प भी नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट इवन हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस. सो गैप इज ह्यूज. उस पर तो मैं 10 घंटे भी बात करूं तो यू नो इट्स गोइंग टू बी नॉट गोइंग टू बी एनफ. बाकी चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू दुनिया में अगर है अभी पाकिस्तान का दुनिया में सबसे जो कंट्री वर्स्ट है चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन में वो पाकिस्तान है. हमारी अभी चेयरपर्सन आयशा रजा फारूक गई थी यूएन के एक कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क में, वहां से हमें पता चला कि वी आर द वर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन में, जो एक बच्चे का बहुत ही बेसिक हक होता है कि वो पैदा होता है और उसको आप उसकी आइडेंटिटी देते हो when you register them as a child. अब कैनेडा में ये होता है कि when a child is born, हॉस्पिटल में ही उनको एक पेपर दिया जाता है और उस फॉर्म में बेसिकली होता है वो जो उनको प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चे का नाम होता है, उसका जेंडर होता है, उसके माँ बाप का नाम होता है और जिस टाइम पे और डे पे वो पैदा हुआ है, तो वो हॉस्पिटल का काम है, वो देते हैं. उसके बाद उसकी घर पे बर्थ रजिस्ट्रेशन की पूरी एक पैकेज जाता है जहां पर वो फिर इट्स मैंडेटोरी टू रजिस्टर योर चाइल्ड. पाकिस्तान में एक और चीज अभी हमें पता चली है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो अगर कोई अपना बच्चा रजिस्टर भी करना चाहता है तो उसकी फी है.
1: फीस पूरी दुनिया में फीस नहीं है?
0: पूरी दुनिया में फीस मुझे और कंट्रीज का नहीं पता है, लेकिन बहुत कंट्रीज में आई थिंक कैनेडा इज द ओनली कंट्री, दैट्स व्हाट वी हर्ड दिस मॉर्निंग, वी हैड अ मीटिंग एंड पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां पर बर्थ रजिस्ट्रेशन की फीस चार्ज की जाती है.
1: तो इमेजिन के कोई गरीब अगर किसी का बच्चा होता है तो वो तो आजकल तो खाने के किसी के पास पैसे नहीं होते, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या
0: तो बच्चा तब रजिस्टर करते हैं जब वो बाहर मुल्क जा रहा होता है या स्कूल में जा रहा होता है, दैट्स व्हेन वी रजिस्टर एनीवेज. तो ये हमारा एक इश्यू है. बाकी आई कैन कम बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज टू मी इशू जो वजीरिस्तान के लैंडमाइन अफेक्टेड चिल्ड्रन है. Apparently ये वाला जो इश्यू है ना ये इतना neglected है कि अगर मैं कल भी इस वाले इश्यू के बारे में पूछूं किसी से भी वो कहेंगे हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. एंड आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन हमारा एक चाइल्ड चिल्ड्रन कंसल्टेशन एक हुआ था last week or 2 weeks ago, and I asked this question. It's like, this person, I won't name names, it's, you know, Menika, do you know anything about

0: Have you guys done anything for the children of Waziristan, jo landmine mines affected hai? They wo kya matlab? They thought jo landmines mein kaam karte hain, jo koile wale.
1: Achha.
0: Maine kaha nahi, jo लैंड माइंस रखे हुए हैं वहां पर जो बच्चे जब वो ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे बच्चे अपने हाथ पांव या अपना दे सम ऑफ देम इवन डाई फ्रॉम दैट तो उसके लिए दे डिडंट इवन नो कि ये चीज एग्जिस्ट भी करती है यहां पर.
1: ये आपने किसी हुकूमती इदारे के बंदे से पूछा?
0: इदारे से नहीं, एक एनजीओ से पूछा. अच्छा. था एनजीओ के पर्सन से पूछा था. फिर अ मंथ अगो और सो एक वजीरिस्तान का लोकल जर्नलिस्ट है, उसका नाम खानसे महसूद है, वो मेरे ऑफिस में, मेरा फ्रेंड भी है, मेरे ऑफिस में आया था. आई हैड टू नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम समवन हु इज लोकल. मैंने उससे ये बात डिस्कस की. ही वाज टेलिंग मी कि जब बारिश हो जाती है तो देन वो बारिश की वजह से पानी वो उसमें लैंड माइंस कुछ जगहों पर वो नजर आ जाते तो अच्छा. बच्चे समझते कि ये कोई खिलौना वगैरह है. दे गो एंड दे पिक इट अप एंड उसमें भी बच्चों के हाथ और ये वो जान से भी चले जाते,
1: वो ब्लास्ट हो जाते हैं.
0: yes, ब्लास्ट हो जाते हैं और उससे वो और जब वो बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके हाथ चले गए, उनके पांव चले गए, तो फिर उसको आप क्या कॉम्पेंसेट कर सकते हो? 2-3 लाख रुपए से तो उनका कुछ नहीं होगा ना. सो वी हैव कम्प्लीटली निग्लेक्टेड दिस पार्ट ऑफ यू नो ये जो चिल्ड्रन है हमारे पाकिस्तान का वो हिस्सा. बाकी भी बहुत जगह है, बलूचिस्तान में भी बहुत जगह है जहां पर बच्चे जो है कम्प्लीटली निग्लेक्टेड. हो सकता है ऐसी और जगहों पर जो मुझे नहीं पता है. जितना मुझे पता होता है आई ट्राई टू नो के व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई ऑब्वियसली ब्रिंग देयर इश्यूज टू द टेबल. लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें हम?
1: तो इसका जो ये जो मतलब आप क्या इसका सोल्यूशन क्या है जो लैंड माइंस हैं वजीरिस्तान में और उसमें से बच्चे भी रोज
0: लैंड माइंस का सोल्यूशन तो उसका तो खैर मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई थिंक इट्स वेरी यू नो उस थोड़े से बड़े लोगों के इश्यूज है. लेकिन इतना हो सकता है कि वहां पर आप इतना करो कि बच्चों का जो एक्सेस है ना उस जगहों पे आप लोग उनको एटलीस्ट वहां पे उनका एक्सेस नहीं होना चाहिए. अगर वो आप टेररिस्ट के लिए रखते हो, अगर आप वो किसके लिए भी रखते हो, वी डोंट नो. अब मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया है, आई कैन नॉट स्पीक फॉर
1: दैट. आई कैन अंडरस्टैंड.
0: तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप लोग रखते भी हो तो ऐसी जगहों पे ना रखो जहां पर बच्चों का एक्सेस हो. द अदर थिंग इज वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई भी ब्यूरो नहीं है वजीरिस्तान में. अब हर जगह पे है, वेदर इट्स वेरी इफेक्टिव और नॉट, हमें हर जगह से केसेस बच्चों के आ रहे हैं. वजीरिस्तान से हमें आज तक एक भी केस बच्चे का नहीं आया. इसका ये मतलब नहीं कि वजीरिस्तान में नहीं होता, इसका ये मतलब है कि वहां पर कोई सिस्टम ही नहीं है.
1: आप तो इसकी बात कर रही हैं मोहतरमा. अभी मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर कि एक सहाफी ने जर्गे के बारे में कुछ लिखा था फेसबुक के ऊपर और उस बेचारे की पोस्ट पे बमुश्किल 25 लाइक्स भी आए थे. उस सहाफी का उसकी गाड़ी चला दी, उसके घर को दरबदर कर दिया, उसके घर वालों को, और उसको सजा दे रहे हैं कि उसको हम मारेंगे इसने जर्गे के खिलाफ बात कैसे की. तो वजीरिस्तान तो ऑफिशियली लाइक बच्चे, आई मीन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, लेकिन जहां पे ऐसी चीजें हो रही हो ना कि जर्गे के 5-10 लोगों की मर्जी से कबीले दरबदर होते हो, तो वहां पे आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं?
0: नहीं तो फिर हमारा सिस्टम किस लिए?
1: तो यही तो दैट इज द क्वेश्चन.
0: हिस्सा क्यों है?
1: दैट इज द क्वेश्चन.
0: अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा है, तो फिर ओन करो, सिस्टम बनाओ. जहां वहां पर जर्गा कितना बड़ा है, मतलब हमारे स्टेट से जर्गा बड़ा हो सकता है? हमारे कानून से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है.
1: The thing is के वजीरिस्तान के ना डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है ना, और वहां पे जो हमारी कुवतें हैं, हमारे मुल्क की जो इस मुल्क को चलाती हैं, वो जर्गे के लोग उनके एसेट्स हैं बेसिकली. सो यू नो वेरी ऑफ द टॉपिक बट या दैट इज द ट्रू. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ब्यूरो की बात की ना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज होते हैं हर शहर में, हर जिले में. तो इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो बहुत सारे मतलब ब्यूरो, आई एम श्योर यहां भी होगा, लेकिन यहां पे अगर आप देखें अभी आप मरकज जाएं तो वहां पे आपको बच्चे मिलेंगे भीख मांगते हुए. तो मैं थोड़ा सा इस साइड को भी टच करना चाहूंगा, जो बच्चे भीख मांगते हैं ये बेसिकली, हमने तो ये ओपिनियन भी सुने कि पूरा माफिया होता है, इनके पीछे एक आदमी होता है, उसके अंडर 100 बच्चे होते हैं, ये कमा के लाते हैं उसके लिए. तो थोड़ा सा इसमें कितनी सच्चाई है और उसका सोल्यूशन क्या है?
0: अच्छा द थिंग हियर विद चाइल्ड प्रोटेक्शन इज हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है जहां तक मैं जानती हूं, अब मेरा पाकिस्तान में एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, बट व्हाट आई नो कि यहां पर वो इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है. ये जो बच्चे हम स्ट्रीट्स पे देख रहे होते हैं, हम इनको अगर फॉर एग्जाम्पल आई रिपोर्टेड टू द पुलिस, पुलिस उनको वहां से हटा लेगी या उठा लेगी, फिर उनको कहां पे लेके जाएगी? चाइल्ड जो हमारे शेल्टर्स है, या मैं हम उनको ग्रुप होम्स कहते हैं, यहां पे शेल्टर्स कहते हैं, जहां पर वो बच्चों को हम कीप कर सकते हैं.
1: रिहैबिलिटेशन
0: नॉट रिहैबिलिटेशन बट सम काइंड ऑफ लाइक यू नो रहने की जगह उनकी. तो वो तो हमारे पास उसकी हमारे पास वो सिस्टम ही इतना वो नहीं है कि हम उधर बच्चों को उधर से लें और वहां पर उनको हम उसके बाद रखें और उनको उनके एजुकेशन बेसिक वो सारी चीजें प्रोवाइड करें. सो द अदर बिगेस्ट इश्यू इज ऑल्सो हमारे सिस्टम में जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसमें हमारी रिसोर्सेज जो है, वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू हैव shelters trained caretakers जो इन बच्चों को उसके बाद आपने बच्चे को स्ट्रीट से रिमूव कर दिया. यू नो कि इट्स अ क्राइम बच्चे से आप खैरात जो पेरेंट्स करते या जो भी करते हैं उसको हम स्ट्रीट से तो रिमूव कर लेंगे. उसके बाद उस बच्चे को हमने एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पर trained caretakers हो जिनको बच्चों के यू नो हवाले से प्रॉपरली ट्रेन किया गया, या उनकी यू नो चाइल्ड वो चाइल्ड या यूथ में कोई डिप्लोमा वगैरह हो तो वहां पे रखते. तो हमें तो एक तो स्टाफ ट्रेन चाहिए, फिर हमें उनके स्कूल जाने के लिए जो है वो सारी फैसिलिटीज या रिसोर्सेज चाहिए, फिर उनको लॉन्ग टर्म उसके साथ क्या करना है वो भी चाहिए. सो वी डोंट हैव दैट सिस्टम हियर. हम तो बच्चों को रिमूव कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या जिनके पेरेंट्स होते हैं वो इवेंचुअली अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाते हैं. अब जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनको यहां पर हम ऑर्फन कहते हैं, ऑर्फनेजेस में जो रहते हैं, उनका ये है कि वो तो उनका कोई नहीं है इस दुनिया में. तो उनको आप जिस भी हालत में वहां पे रखो, दे डोंट हैव अ चॉइस, दे हैव टू स्टे देयर. लेकिन कुछ ऑर्फनेजेस जो है, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू सम, और एक जिनको मैं जानती हूँ, सॉरी अगर कोई मैं नहीं जानती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वाले बैड है, लेकिन स्वात में खपल कोर इन स्वात इज लाइक डूइंग एन अमेजिंग जॉब. वो उसमें जितने भी बच्चे हैं, उसमें आप देखते हो जो अभी कुछ क्या बच्चे उससे निकल के क्या क्या बन गए हैं, और जो रहते हैं आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त चले जाए वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप को मिलेगा कि यहां पर कोई अब्यूज हो रहा है. इफ यू गो देयर अन यू नो आप उनको इन्फॉर्म नहीं कर देते हो और चले जाते हो. You will not see any of that.
1: Where is that in Swat? Kyun kidhar
0: hai? Ye Swat, I don't know exactly where it is, lekin it is in Swat.
1: ओके सो स्टार्ट में जब हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की तो आपने कहा कि कैनेडा में मतलब हुकूमत जाके किसी से भी बच्चा ले सकती है अगर वो उनको अच्छे से ट्रीट ना कर रहा हो या बच्चे को कोई मसला हो. तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर हम ऐसी पॉलिसी मिसाल के तौर पर बनाते भी हैं कि बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है, अगर उसको नेग्लेक्ट किया जाए तो कौन से फैक्टर्स है जो ये होने नहीं दे सकता, कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारे जो मॉरल वैल्यूज जो हमने अपने बनाए हुए हैं, एक डेढ़ इंच की मस्जिदें सबने बनाई हुई अपने, तो ऐसा क्यों नामुमकिन है या हो सकता है यहाँ पे, नहीं हो सकता कि कल को पुलिस आ जाए और बच्चा लेके जाए माँ बाप से यहाँ पाकिस्तान में?
0: मुझे तो अभी तक मैंने कोई भी केस नहीं देखा है जहां पर पेरेंट्स से बच्चा रिमूव होके. रिसेंट ये जो रिजवाना का केस है बहुत वो हो गया, जो जज किसी जज साहब की बीवी ने उसको इस हद तक टॉर्चर किया कि बर्न्ड हर एंड व्हाट नॉट, वो बेचारी उनके घर में काम करती थी. तो उसमें पेरेंट्स का भी तो वो है ना. अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये क्या, तो वो दोनों को पकड़ते कि पेरेंट्स आपके क्या कर रहे थे, सो दे बोथ are not

0: He has to say ki usko
1: maar
0: do, because then she loses her power. Aur isi tarah families ke alawa bhi aap hamari politics mein dekhe. Aapne kabhi suna hai ki koi aurat jo hai aurat ke liye bill pass kari? Khyber Pakhtunkhwa mein aaj tak jitne bhi honor killings hue, hamare pakhtunon se kitni auratein politics mein aayi hai? Bahut sari aayi hai. Abhi tak Swat ki main baat karti hoon, Khyber Pakhtunkhwa sare ki isliye nahi kyunki uske main itna nahi janti, lekin Swat ka main aapko 110% bata sakti hoon ki jitni bhi honor killings hui hai, jinhone apni biwiyon ko mara hai, betiyon ko mara hai, behno ko mara hai, aaj tak ek bhi aadmi ko saza nahi hui hai.
2: Ek bhi aadmi ko
0: aaj tak saza nahi hui, not even one. Aur agar aap mujhe bata ke dhoond ke denge ki ye wala aadmi jo tha usne behan ya beti ya biwi ko qatl kar diya aur usko saza ho gayi, phir you know I'll just say ke sorry, I was lying.
2: Okay.
0: Not even one. Aur hamari politicians jo hai wo baithi hui hai parliaments mein, pashto bhi bolti hai aur insani huqooqon ke baatein bhi karti hai. So yeah, hum wahan par aurat ko power dete hai jahan par hame pata hota hai ki wo patriarchy ki rakhwali karegi. Otherwise nope.
3: All right. So I think is there anything that I did not ask and you think that I should ask you and we should talk about that?
0: No.
3: Aakhir mein batao ke Pakistani mard Andrew Tate ko itna appeal kyun karte hain?
0: Sorry, kya?
3: Andrew Tate. Pakistan.
0: अच्छा, एंड्रयू टेट जो है वो हमारे एक प्लीज डू नॉट नेम हिम, हमारा एक पॉलिटिशियन है वो है ना बेसिकली,
3: मेरे नाम से नहीं.
0: तो एंड्रयू टेट को हम इसलिए बहुत पसंद करते हैं, एक तो वो औरत को बहुत कमतर समझता है,
3: मिसोजिनिस्ट,
0: हाँ ओके, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट है, फिर वो अपने सारे मजे कर रहा है और वो मुसलमान भी हो गया तो वो जन्नत में भी जाएगा.
3: सी प्रीमियम मजे हैं.
0: So,
3: हम मुफ्त में दोजख जाएंगे.
0: Anyways, I don't want to even talk about that man. He is not even worth of our discussion, seriously.
3: ये भी सही है. जी. इस बात पे हम वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच. आई होप
3: थैंक यू सो मच. इट वॉज सच अ, मतलब स्वाद के बारे में ये चीजें मुझे पहले, लाइक आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट. और ये जो चाइल्ड के जो इश्यूज हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, इवन दो आई वॉज विन आई वॉज यू नो आई वेंट टू नादरा इन कराची फॉर माई CNIC, दे सेड बेटा ब्रिंग योर बर्थ सर्टिफिकेट, एंड आई वॉज लाइक मैंने तो बनाया नहीं अभी तक. तो मैं जब घर आया तो घर में मैंने पूछा अम्मी से कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका निकाहनामा चाहिए. अम्मी ने कहा निकाहनामा भी नहीं बना अभी तक. फिर मैंने जाके अपने अम्मी अबू का निकाह कराया. सही. निकाहनामा बना के उसे कंप्यूटराइज कराया, रजिस्टर कराया, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो जाके हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाया. 18 साल के लड़का अस्पताल में खड़ा अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहा है.
0: एग्जैक्टली. सो दिस वॉज द अदर थिंग. सॉरी, ये लास्ट में इसलिए ये जरूरी बात करना चाहती हूँ कि नादरा जो है ना, उन्होंने अपने आप से पता नहीं क्या बनाया हुआ है.
3: खुदा है.
0: इतना उनका सिस्टम ऐसा है कि कोई अगर अपने बच्चे को रजिस्टर भी करवाना चाहे ना, तो वो कोई ऐसी इजी उन्होंने कोई वो बना सिस्टम नहीं है कि वो जाके अपने बच्चे को रजिस्टर करवाए. वो तो उनकी उधर खाल उतार देते हैं वहां पर.
3: मैं तो लड़ाइयां की है नादरा के दफ्तर में कराची में, जब मैं अपने अम्मी का शनाख्ती कार्ड बनवाने गया था. ये भी देखे ना, मेरी वालदा का शनाख्ती कार्ड, शी वॉज 46, शनाख्ती कार्ड तक नहीं बना था अम्मी का. तो आपकी बात ठीक है, एंड आई सेकंड दैट, एंड दैट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी. सो थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस.

0: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, और उसमें से सबसे मेन टॉपिक्स जो हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ऑफकोर्स एजुकेशन, ऑफकोर्स पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। मैं कहती हूँ जो कहते हैं ना कि हम वो जनरेशन है जो अपने पहले पेरेंट्स से डरते थे, खैर अभी भी उनका एक रोब और दबदबा है, बट एट द सेम टाइम अब हम अपने बच्चों से भी डरते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट आया है। एंड दिस इज लिटरली एक्चुअली ट्रू। किसी भी सोसाइटी को मेजर करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं, आप देखते हैं क्या ये कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है या ये इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द ईस्टर्न साइड, वी हैव ऑलवेज बीन कलेक्टिविस्ट। बड़ा बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट, लिविंग एज अ ट्राइब, विलेज, और ये अभी की बात नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। West, on the other hand, has been individualistic. Me, myself, and I, वो personal जो भी demand है, जो भी खुशी है, उसको सबसे ज्यादा value देते हैं। Well, हमने वो thought process यहां पर लिया। We said maybe that's the better way of living. हम क्यों compromise करते रहे, हम क्यों sacrifice करते रहे, which is correct to a sense, but हमने वहां से thought process तो उठाया, but मसला वहां आया उस थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ना सिस्टम, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना बाकियों की वो मेंटालिटी। अभी बहुत रिसेंटली आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट भी आई है कि जस्ट इन इस्लामाबाद द डाइवोर्स रेट हैज इंक्रीज टिल 50% इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। दिस इज crazy. क्या reasons है? There's a lot to talk about. We have with us Maria Suleiman. This is not her first time, by the way. She's been with us. हमने financial inclusion, literacy, children, entrepreneurship बहुत बात की थी। How are you?
1: I'm fine. How are you, Mariam? It's been a while.
0: Yes. But topics ऐसे थे कि we had to have you again.
1: Thank you so much. It's always a pleasure.
0: ओके मारिया, सबसे पहले तो बताइएगा क्या इतना डिफरेंस फील होना शुरू हो गया है, बिकॉज सो मच सो। चलिए सिंपल स्टार्ट करते हैं। अब हम तैयार भी सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं हो रहे होते, अगर तैयार हुए हैं तो सोशल मीडिया पे तस्वीर तो जानी चाहिए, स्टोरी भी जानी चाहिए, रील भी जानी चाहिए। अनाउंसमेंट है, बढ़ते आ रही है, शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, खानदान वालों को भी अब शायद सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
1: I sometimes wonder that the first question we should ask ourselves, who would we be if there was no Instagram or no social media? What would we dress up as? What would we buy? What would we be talking about? हमारा टेस्ट कैसा होगा, हमारा स्टाइल कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम आजकल इसलिए पहन रहे हैं या ओढ़ रहे हैं क्योंकि दैट्स द डन थिंग। और अगर आपने वो एक यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई तो शायद आप अपने सोशल सर्कल में फिट नहीं होंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स दैट वी आर ऑलवेज अवेलेबल। एवरीवन इज एवरीवेयर, यू नो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ यू बींग सीन एट प्लेसेज दैट रियली मैटर। So is it really important to be everywhere? हम हर जगह पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात जो ये है कि मैं, आपने बात अभी की कि अनाउंस करना जरूरी है, रीशेयरिंग, क्रॉस शेयरिंग, इंस्टाग्राम और फॉर दैट मैटर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ ग्रेट टूल, बट आर वी यूजिंग इट और इज इंस्टाग्राम यूजिंग अस?
0: आई थिंक अब तो वो एल्गोरिदम्स के ऊपर इतना डिपेंड होना शुरू हो गया कि हमें लगता है एल्गोरिदम इज डिटेक्टिंग व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड पोस्ट, किस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो हमें नंबर्स मिलेंगे, अगर आप उस तरीके से भी देखें।
1: एंड वी डोंट आस्क दैट डू वी लाइक इट, वी आस्क वुड दे लाइक इट, वुड वी गेट रिएक्शंस, वुड वी गेट द लाइक्स, वुड वी गेट द एंगेजमेंट, एंड इट्स ऑल अबाउट अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया इज इविल, I feel like there's a better way of using it, and that's where I think we're failing as a society. We meet friends, we meet acquaintances, we go out, we take pictures, we post them, but do you really have anything to say to each other after that photo? Tag me, okay. We must meet.
0: Yes.
1: थोड़ा सा ये ना conversation आज unfiltered हो जाएगी. But you know, you like. Let's meet up. That never happens. We meet up And at another event, we take the photos, and I'm going to get hate for this, but it's true.
0: It's true, yes. It's
1: how do you find, the question is, how do you find substance? You see, we society hamari banayi hui hai na, we're all part of it. Theek hai, ye sari cheeze hain jo hame shayad itni achhi nahi lagti, itni appeal nahi karti, but we're the ones taking part in it, right? So, I wonder that if aap agar ek mehfil mein hain, ya aap agar char logon ke saath baithe mein hain, aapki shallow level pe baatcheet chal rahi hai, theek hai? Har kisi ke saath depth dhoondne ki zarurat bhi nahi hai.
0: Acha, har kisi mein hota bhi nahi hai.
1: Na hota hai.
0: You
1: know, some people are good for meeting up for a sport, some people are good for a laugh, you know, and that's about it. You can't have a conversation with them. But I feel like we, in general, are crave ke saath baithe mein hain. Aapki shallow level pe baatcheet chal rahi hai, theek hai? Har kisi ke saath depth dhoondne ki zarurat bhi nahi hai.
0: Acha, har kisi mein hota bhi nahi hai.
1: Na hota hai. You know, some people are good for meeting up for a sport. Some people are good for a laugh, you know, and that's about it. You can't have a conversation with them. But I feel like we,

0: स्टफ में.
1: तो मतलब आपको दिखाने को नंबर्स में तो बहुत सारे फॉलोइंग भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, बट मे भी कोई इक्का दुक्का हो जो एक्चुअली आपको जानता हो, जिसके साथ शायद आप वो बात भी कर सके.
0: आप बात भी कर सके.
1: मारिया, आपने फील किया, क्योंकि मैंने पर्सनली तो फील किया है, पहले तो हम एक दूसरे को बात, अब जैसे बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, ईद के ऊपर होता था हैंड रिटन कार्ड्स का कल्चर,
0: आई नो,
1: और बड़ी वो एक ट्रेजर होता था, एक पर्सनलाइज सा मैसेज आपके दादा दादी ने लिखा है, आपने किसी को दोस्तों को भेजा है, वो आप संभाल के रख रहे हैं. उसके बाद ऑब्वियसली वो चीज चेंज हो गई, आप मैसेजेस पे व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस कर देते हो ईद मुबारक, फिर आपने गिफ्ट भेजना शुरू कर दिया, उससे भी शॉर्ट कर दिया, अच्छा सा स्टिकर डाउनलोड करके भेजना शुरू कर दिया, अब उसके भी एब्रीवेशन आना शुरू हो गए. तो मतलब अब तो कोई एफर्ट कर ही नहीं रहा है.
0: अब ईद आएगी तो फिर बकरे भेज देंगे इमोटिकॉन.
1: अच्छा, अब सोशल मीडिया पे किस तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, रील्स भेज के, बस रील भेज के मैसेज समझ लेना आपको क्या कहते
0: हैं. एग्जैक्टली, कि मैंने रील भेजी देख लो, दैट्स अबाउट इट.
1: यस.
0: एंड आई समटाइम्स यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट द लग्जरीज ऑफ लाइफ, we can all, you know, alhamdulillah, maybe, you know, travel, we can buy the shoes that we like, we can buy the bag that we want to carry, and we can show it all off. I mean, we do show off, right? End of the day, aap agar dikhane ke liye nahi le rahe, to aap kyun le rahe hain almari mein rakhne ke liye? To lekin main ye sochti hu ki agar aapko pata ho ki koi bhi nahi dekh raha, to aapka apna signature style kya hai?
1: I think abhi bhi wo bahut simple sa hoga. I think maybe we would be okay agar aapne PJs pehne hain, shirt pehni hai.
0: I'm okay in a t-shirt and a pajama my entire day until somebody at home says you haven't changed, do something, you know. I mean, I'm not saying that you be shabby. I'm saying
1: clean, hygienic,
0: us tarike se ho, comfortable in your own skin. And I think we're all struggling with it. और एक होता है कि आप अपनी, अब देखें ये तो सारा, it's very easy to criticize the society, ठीक है, we're all a part of it. But then I am telling you, इसी सोसाइटी में आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही शालों मिलेंगे, सारे ही सर्फिस लेवल मिलेंगे, अच्छे लोग भी हैं. और उन अच्छे लोगों को आप ढूंढें कैसे, दैट समथिंग वो आप अपनी जो है, अपनी जो यंगर जनरेशन है, आप उनको भी बताएं कि हाउ डू यू मास्टर दिस आर्ट ऑफ बींग लाइकेबल.
1: अच्छा मारिया, इसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगी, अब स्पेशली आप कह लें कि मिलेनियल्स, या आई थिंक
0: मिलेनियल्स
1: एंड एक्स बी,
0: ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है.
1: और अच्छा, हम लोगों ने फिर थोड़ा वो देखा है, वी हैव द रियलाइजेशन कि उसके बगैर भी लाइफ का फ्लेवर चखा हुआ है, एंड देन द स्टोरीज दैट वी लिसन टू फ्रॉम आर बड़े, तो एक आपको वो चीज की है. लेकिन ये जो पौध मैं कहती हूँ जो ग्रो ही इन सब गैजेट्स के साथ, जिनके बचपन से सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, द कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट दे फील इस एज में, जब तो लिटरली आपका माइंड भी उस तरीके से बना ही नहीं होता, फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है, तो आप वो लेते हो अपने ऊपर प्रेशर, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस में आना, उसकी वजह से बुरा फील करना, सो मच सो द सुसाइडल टेंडेंसीज आर इंक्रीजिंग, क्योंकि लोग आइसोलेशन में अंदर घुट घुट के पता नहीं क्या फील करके बैठे हुए हैं, कितने ट्रॉमाज हैं, कितने उस चीज को ट्रिगर हो जाते हैं. सो अलॉट इज चेंजिंग. आई थिंक अब क्या करें, मैं तो कहती हूँ एजुकेशन भी आपने ऑनलाइन कर दी है, तो ऑनलाइन क्लासेस दे डू हैव एक्सेस टू दीज गैजेट्स. एज पेरेंट्स हाउ डू वी कंट्रोल दैट?
0: एक तो आई फील लाइक मरियम, घर पे ना कंपेरिजन ना करें, बिकॉज यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल again it comes back to social media, and even like for example if you're living in a joint family system tab bhi comparison hota hai, agar aap na bhi reh rahe ho cousins mein bhi, behan bhaiyon mein bhi, aur bachchon mein aap khud comparison karte ho, usko dekho usne kya kiya, tumne nahi kiya, stop doing that. aur bachche jo hai na wo energy aapki, like I mean they pick up on your energy, right? So whatever your energy is at home, it's infectious. If the child is watching you compare and complain and crib all the time, I mean, fine, we do that, theek hai, we're women, ho jata hai, theek hai, but we have so much going on biologically as well. But I feel like ke ek constant pattern aap na banaye ki aapne sirf apne bachchon ke samne mat comparisons kare, oh usne dekha gaadi kaun si le li, ya usne kya, hum karte hain, hum log karte hain, aur it's very natural, isme koi galat baat nahi hai, lekin kis had tak you want you want something that another person has, good. Allah Ta'ala se mange ki Allah apne usko nawaza hai.

0: is powerful. Silence can take you places where your words cannot.
1: Your words cannot. But unfortunately, nowadays what happens is, dusra banda baat kar raha hote to hame beech mein urge ho rahi hoti hai. सबर सर मैं बता दूँ कट करके बता हाँ, हाँ, या जब दूसरा बंदा बात करे हम उसी वक्त उसका जवाब सोच रहे होते हैं सो वी आर नॉट इवन लिसनिंग टू व्हाट द पर्सन
0: इज रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं ना हम लोग सॉरी रिएक्ट करने के लिए सुनते हैं हम सही से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे अच्छा दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो जो चेस वाली बात है आप खामोशी से जो करना है करें और उसके बाद चेकमेट बस
1: दैट फीलिंग
0: लाइफ इज लाइक दैट लाइफ इज ऑल्सो लाइक चेस चुप रहें और जब कुछ हो जाता है मटेरियलाइज हो जाती हैं चीजें तब उसके बारे में बात करें
1: अच्छा ये इस पे हमने सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा है कि जरूरत से ज्यादा प्री हाइप क्रिएट कर देना हर चीज
0: yeah,
1: की
0: that's how it works.
1: अपने स्पेशली फैमिली रिलेशनशिप्स कपल्स इवेंट्स और आगे सारा सो मच सो फैमिली ब्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है
0: सब कुछ दिखा रहे हैं
1: लिटरली शोइंग यू देयर बेडरूम
0: हमने कैसे दांत ब्रश किए
1: सो प्रिवेसी है ही कहाँ एंड देन अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे जो कुछ अरसे तक वो शादी चल सकी उसके बाद और एक जो सबसे बड़ा वो रीजन आता है कि नजर का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा दिखा दिया कि फिर क्या हर कोई अपनी तरफ से देख रहा तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट
0: बिकॉज मरियम आई थिंक वी आर नॉट लिविंग लाइफ देन वी आर डॉक्यूमेंटिंग इट बेसिकली दैट्स व्हाट वी डूइंग वी देयर फॉर द क्लिक्स फॉर द लाइक्स एंड ओवरऑल वही वाली बात है कि आपने सब्सटेंस को एक साइड पे कर दिया है और जो सामने नजर आ रहा है सो देयर इज दिस प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन एज वेल हम भी उसमें थोड़ा वो क्रीपिन हमारे मिलेनियल्स में भी ये बात आ चुकी है वी आर नॉट वर्किंग ऑन एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग वी आर वर्किंग ऑन लुकिंग सक्सेसफुल इंस्टाग्राम पे क्या नजर आ रहा है लोगों को क्या नजर आ रहा है ठीक है तो वो तो सारा पर्पज ही डिफीट हो जाता है ना फिर वही प्रॉब्लम है कि यू आर नॉट बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी यू आर नॉट बिल्डिंग योर सॉफ्ट स्किल्स यू आर नॉट बिल्डिंग योर कैरेक्टर इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ डज इट लुक लाइक
1: किसको ज्यादा शेयर्स मिलेंगे किस पे ज्यादा एंगेजमेंट आएगी
0: एंड व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल लाइकेबिलिटी हाउ डू यू मास्टर लाइकेबिलिटी दैट पीपल एक्चुअली लाइक यू यू हैव टू मास्टर थ्री थिंग्स नंबर वन इज एम्पथी Number two is authenticity. Number three is enthusiasm. Now let's go over these three.
1: Okay.
0: Empathy is that even if I don't agree with what Mariam is saying, I'm still going to listen to her. And I don't have to agree with you, but I'm going to listen and understand your point of view.
1: Because वो अपने experience कहीं से तो आ ही रहा है जिसकी वजह से उसका ये mindset है.
0: Yes. So when I leave this room, you shouldn't be like, "Uff, इसने तो इतना बोला." You should be like, "I felt heard. I felt seen." That's empathy. Then authenticity. Now I'm not talking about social media wali authenticity. Okay. Ke wo, this okay. one, not this one. Actual authenticity that when I'm sitting with someone, they know that I am comfortable in my own skin, and I am comfortable with who I am. And I'm ठीक है आपने ऊपर से जो सरसरी सलाम दुआ कर ली जिस तरह सब करते हैं उसके बाद जब आप मेरे साथ बैठेंगे तो you'll get an insight into my world and how I am. So if you're ready for that, good. If you're not, then that means you're not my person.
1: Filter out.
0: Yeah. Number three, enthusiasm. Enthusiasm is infectious. Nobody wants to be around negative people.
1: Lazy negative people.
0: Nahin, nobody. Mm-hmm. After a while, we're like, yaar, kya, achha, chalo. We can only take that person in short doses. You don't want to be that. You want to be forward to her.
1: Yeah.
0: And to master that personality, the likability level, you need to have these three things. Yeah. And this is something that वही वाली बात है आजकल के बच्चों को ये चीज करके दिखानी है
1: तभी वो सीखेंगे आप सिर्फ कहोगे तो वो नहीं होंगे
0: कहने से तो कभी
1: अच्छा हमें पर्सनली भी लगता है कोई कितना भी कह दे हम नहीं तब तक कहते जब तक हम खुद कन्विंस नहीं होते और ये वो जनरेशन है जिनको कन्विंस होने की जरूरत है ये टीचर्स को सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे टीचर्स चैलेंज करते हैं अगर आप उनको उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से उनके सवालों को अगर आप सेटिस्फाई करोगे ओनली देन दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू तो ये हमने बड़ा शिफ्ट देखा है अच्छा इसी के साथ साथ अगर थोड़ी सी बात करें इनसिक्योरिटीज बिकॉज दिस इज समथिंग वी वर टॉकिंग इवन बिफोर द कैमराज टर्न ऑन हमारी प्री कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि कैसे हमारे टाइम के कॉम्प्लेक्सेस अलग होते थे अब जो जनरेशन आ रही है दे आर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट वो इतना उस चीज को नहीं लेते हम जिन चीजों के साथ बड़ा हुए थे
0: बिल्कुल
1: जैसे हमने हाइट की बात की कर्ल्स

0: ने गर्ल्स एंजॉय करना शुरू कर दिए,
1: गर्ल्स एंजॉय करना शुरू कर दिए. एंड अभी मैं जब आ भी रही थी तो माय मॉम वाज सेइंग चलो गुड लक विद योर विद वेयर यू आर गोइंग. तो मैंने कहती है तुम पीछे से कुछ आवाज आ रही है, तुम अपने बाल ब्लो ड्राई कर रही हो. तो कहती है मारिया why are you doing this, and I had like 10 things to say to her, but then again, you know, there are days when I like my curls. Yeah. There are days they're so frizzy, like just you need to do something, just tie them up. Yeah. Anyway, coming back to what you were saying, ke jo insecurities hain, yeah, so basically jab hum log bade ho rahe the na to hame we were taught to conditioning aise hui thi, we were taught to shrink ourselves. We were taught to stay quiet
0: and please everyone.
1: We were also conditioned to not say no.
0: Agar aap no kahoge to aap to gande bachcho.
1: I was lucky, my mother always told me, she used to have these post-its on my door that say no, be polite yet assertive, you know, all these things. So wo baat mere sath reh gayi thi. Lekin ye jo so basically hua ye ki hum logon ko to shrink karna sikha diya, to fit in, shrink yourself because adjust karna hai, accommodate karna hai, especially ladkiyon ke liye. To wo to karengi na ye. Lekin ye jo bacche hai na ye aur ek aur cheez hame bataya hai ki opportunity koi aayi hai to grateful ho, shukr karo. Hame bare minimum ke sath khush rehna bataya hai. आपको कोई क्रम्स भेज देना, आप बच्चे शुक्र करो. अच्छा, हस्बैंड्स की बात फर्ज करें हम थोड़ा सा अगर कंप्लेन कर दें कि आज उसने ये नहीं किया या वो ऐसे कर देता या वो बर्थडे भूल गया है कुछ बात, तो आपको सुनने को मिल सकता है किसी बड़े से, यू शुड थैंक गॉड ही डजंट ड्रिंक, मुंह मारी नहीं करता, शराब नहीं पीता, मारता नहीं है. एंड आई एम थिंकिंग कि ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए. आप अगर किसी इंसान को अगर आप किसी लड़की का रिश्ता लेने जाते हो और अगर आपको वो कहेंगे बहुत अच्छी है, ये शराब नहीं पीती, ये डांस नहीं करती, सही है, व्हाट वुड आप क्या कहोगे, व्हाट द हेल, व्हाट आर दिस सेइंग.
0: मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्राइटेरिया में आना ही नहीं
1: ये
0: चाहिए,
1: तो आना ही चाहिए भाई. आप तो सोचेंगे ना कि लड़की सुशील होगी, सुंदर होगी, प्यारी होगी, गोरी चिट्टी होगी, पतली होगी, खाना बनाएगी, पढ़ी लिखी भी होगी, वो डॉक्टर
0: गोल बनाएगी,
1: डॉक्टर बहू जो है रोटी गोल बनाएगी और डॉक्टर होगी या लॉयर होगी, यू नो, इतनी सारी चीजें, मतलब ये तो बात ही कोई नहीं है. और जब हस्बैंड पे बंदों पे आता है तो ये तुम शुरू शरीफ है, बहुत शरीफ है. अगर हमारे घर में जब कभी कोई कुक आता तो मुझे याद है बहुत फनी एक चीज बन जाती है कि वो खाना अच्छा नहीं बना रहा ना, तो कोई कहेगा घर पे लेकिन बंदा अच्छा है. अब मेरी बस होगी, मैं कहती हूँ मुझे खानसामा चाहिए जो सही खाना बनाए, मुझे बंदा नहीं चाहिए अच्छा, मैं क्या करूं उसकी अच्छाई का, मुझे खाना चाहिए सही से, यू नो व्हाट आई मीन. सो हम लोगों की ये कंडीशनिंग हुई हुई है
0: कि शुक्र करें. हम पता नहीं कितने इवल्स में रह रहे हैं, तो उसमें अगर तीन इवल्स वो वाले नहीं है तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द बाकी पैकेज.
1: यस, वी हैव मेड आवर मिस्टेक्स, दिस जनरेशन वी हैव मेड आवर मिस्टेक्स लाइक श्रिंकिंग टू फिट इन. ये जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं अभी ये अपनी खुद की मिस्टेक्स
0: करेंगे. लेकिन मारिया, अगर इसको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे लेंस से भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो यही वन ऑफ द मेजर रीजंस आ रहा है कि लोगों ने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दिया है. सेक्रीफाइस तो थोड़ा बहुत तो करना होता है, अगर रिलेशनशिप है तो दिस इज मोर ऑफ कॉपरेशन, आपको थोड़ा
1: इट्स अ टू वे थिंग.
0: तो आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जाके, जैसे होते ना, मैं कहती हूँ नाउ पीपल ट्रीट रिलेशनशिप्स लाइक सब्सक्रिप्शंस. मुझे कॉन्टेंट पसंद नहीं आया, अनसब्सक्राइब, खत्म. ये
1: टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है. आई फील लाइक आपका टॉलरेंस लेवल, जिस तरह आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है,
0: इवन लेस देन 3 सेकंड. पहले हम कहते थे 3 सेकंड पे आ गए, अब तो 3 सेकंड
1: भी नहीं है. 2 सेकंड पे भी इस तरह. लेकिन लाइक माई टेक इज दैट ये जो जनरेशन है ये अपनी खुद की गलतियां करेगी जैसे हमने अपनी की हैं, और वक्त ही इन्हें सिखाएगा जैसे हमें वक्त ने कुछ चीजें सिखाई हैं जो हम वक्त से पहले नहीं सीख सकते थे, बाउंड्रीज सेट करना और ये. लेकिन ये जो नए वर्ड्स है ना, ये मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि ये बच्चे, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम गैस लाइटिंग यू. हम तो नाश्ते में और खाने में और शाम में हमें गैस लाइटिंग होती थी.
0: हम लोग पहले ये वर्ड्स, वी डिड नॉट हैव, ये फेमिलियरिटी नहीं थी, ये वर्ड्स हमारी जुबान पे इतना नहीं थे कि हम खुद से कहें मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ये गैस लाइटिंग हो रही है, ये वाली टर्मिनोलॉजी,
1: ट्रिगर्ड, चलो फैट शेमिंग, वैसे भी ये सब चीजें गलत हैं.
0: कॉन्सेप्ट्स थे बट हम उसको नहीं यूज करते थे इतना.
1: लेकिन मैं ही कहती हूँ आप बाउंड्री सेट करते करते आइसोलेट ना हो जाए कहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों को इंसानों की जरूरत पड़ती है,
0: सोशल एनिमल्स हैं.
1: और ये तो इस्लाम में भी है, मतलब आपने कता तालुक ही नहीं करनी. हाँ, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, आप उनसे दूर हो जाएं, देयर इज नो हार्म. बट कहीं ये नहीं है कि आप ओ ही इज नॉट माय वाइफ,
0: तो ये एंड
1: क्या मतलब है भाई, मतलब थोड़ा सा तो एफर्ट करो. तो वाइब नहीं है, इट्स नॉट. वो दूसरा वर्ड क्या है, एक और भी है जो ये यूज करते हैं, क्रिंज.
0: क्रिंज
1: क्रिंज मैंने कहा मैं तो मतलब
0: फोमो हो रहा है, क्रिंज कंटेंट है
1: इनको तो, इनके तो इमोशंस ही इतने बड़े बड़े हैं.
0: बट एब्रीवेशंस में आ गए,
1: एब्रीवेशंस में आ गए हैं कि ये भी बात जरा छोटी करें ना. तो लेकिन उस पर मुझे यही फील होता है मरियम के ये बच्चे, इनकी अच्छी बात क्या है, ये जो बच्चे हैं ये इनका जो वीकनेस है वो ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, इनका एक्सपीरियंस कम है, ओवर कॉन्फिडेंट है. ये कहते हैं हम खुद अपॉर्चुनिटी हैं और क्या, इनको गाइडेंस चाहिए, इनको गाइडेंस चाहिए कि आपकी जो एक्सप्रेस करने की सलाहियत है उसको पॉलिश करना है. अभी आपने दो चार नए वर्ड्स तो सीख लिए हैं, वायरल चीजें सब पता है आपको. आप बच्चे को दें, 10 साल के बच्चे को आपको वीडियो एडिट करके देगा, लेकिन उसको इमोशनल रेगुलेशन का नहीं पता
0: नहीं होगा. लेकिन वो भी इतना ही जरूरी है. यस,
1: वो भी उतना ही जरूरी है. दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई हैव दीज वर्कशॉप्स ऑफ माइन और इवन द टाइनीप्रेन्योर्स इनिशिएटिव इटसेल्फ, आई ऑलवेज से दैट इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स एन अम्ब्रेला. और उसमें ये सब चीजें आती हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम एंड ऑफ द डे विद योर फैमिली. दैट विल टेक आई फील लाइक हम एज पेरेंट्स भी हम भी हर वक्त फोन पे
0: कर रहे होते हैं. तो वही है कि अगर हम खुद वो करेंगे, बच्चे कमरे में बैठे हम अपना फोन यूज करें तो ऑब्वियसली वो भी कहेंगे. आप उनको कहोगे नहीं यूज करना तो वो मना नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को वही करते देख रहे हैं. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज टू प्रैक्टिकली डू थिंग्स फॉर देम सो दैट दे डू दैट एज वेल. अच्छा मारिया, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, हमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत सारी चीजें ना हमारे साथ नहीं शेयर करते थे. एक वो कवर, एक वो फिल्टर बबल में रखा होता था, जानबूझ के रखा होता था. बट हमें आजकल लगता है कि अब बच्चों को वैसे इतना कुछ पता होता है, आप ना बताओ तो वो इधर उधर से सुन के आ जाते हैं. तो हमने भी अब कोशिश करना शुरू कर दी कि उनको ये भी बता दें, वो भी बता दें, किसी और से सुनेंगे उससे बेहतर है हम अपने तरीके से बता दें. डू यू थिंक दैट इज क्रिएटिंग मोर एंग्शियस किड्स?
1: Telling them things that yes. you tell them age appropriate things and you tell them in a very simple way.
0: अच्छा, मुझे एज अप्रोप्रिएट भी डिफरेंट लग रहा है. मुझे लग रहा है हर घर से एज अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इज डिफरेंट.
1: यस,
0: वो कोई ऐसी चीजें समझ के आ रहे जो शायद उनके घर के हिसाब से इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू नो,
1: दे वॉन्ट टू नो. बस अब वही मुझे तो दैट्स व्हाट आई हैव डन विद माई चिल्ड्रन, दैट आई हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई 12 ईयर ओल्ड अबाउट थिंग्स दैट ही वॉज क्यूरियस अबाउट, प्यूबर्टी, ग्रोइंग अप एंड सर्टन चेंजेस इन हिज बॉडी. आई वॉन्टेड टू टेल हिम and I wanted him to know from me because I knew that I would simplify it for him. And same goes for my daughter. I would simplify it for her. Bacche jo hain unko bade simple answers chahiye hote hain, ye lambi lambi kahaniyan, ye jo aapas mein jo hai na ye bacche baithte hain aur ye
0: fir to obviously curious mind aur jagahon pe bhi jayega aur cheeze explore karenge, kyunki age aisi hai, mind aise chal rahe hain, hum unko blame bhi nahi kar sakte.
1: uska mujhe ye solution lagta hai ki have, again it comes back to, can have conversations with your kids and keep them connected to the Quran. I can't stress this enough, that they should know their religion. I feel like usse bahut farak padta hai. Ye nahi hai ki aap, main ye nahi keh rahi ki aap koi bahut koi mushkil jo cheeze hain wo shuru kar dein, basic cheeze hain because like just स्टेप बाय स्टेप उनको बताएं. जिस तरह होते ना गाइड्स फॉर डमीज, जब हम छोटे थे तो हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो फ्लैश कार्ड्स होते थे. व्हेन आई वाज डूइंग माय लॉ डिग्री आई यूज्ड टू हैव दीज कैवेंडिश के लॉ कार्ड्स और वो इतने सारे मेरे नोट्स होते थे और वो इतनी सी बुकलेट उसके
0: फॉर डमीज.
1: जस्ट मेक श्योर दैट यू गिव देम इन्फॉर्मेशन इन लाइक इन अ फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड्स, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. सो इवन इफ दे हेयर समथिंग, they should know that mummy or baba told us this, so they should know who to trust. And when they come back with that information, you say okay, maybe this is what their parents have told them, but what I've told you, you need to keep that in your mind.
0: Yes. अच्छा अब थोड़ा सा ये भी आया कि हमने इतनी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी है, ये भी करना है, बच्चों को राइट एंड रॉन्ग भी बताना है, फिर सेक्स एजुकेशन की भी बात आ रही है, फिर रिलेशनशिप में वैसे इतने डायलेमास आ रहे होते हैं, बहुत सारी बच्चियां लड़कियां दे आर सॉर्ट ऑफ afraid of getting into relationships, they are afraid of getting into the institute of marriage for that matter. Unko dar lagta hai kyunki humne apne se badon ko dekha hai, ammiya jo hain bas sacrifice hi kar rahi thi, unke sath bhi ye ho raha tha, husband bahar nikal ke affairs kar rahe, then the sort of content that we are consuming on television nowadays, it's very normal for a husband to have affairs, biwi bichari ha to kitna dekh rahe, to uski wajah se ek ab humne wo bhi generation dekhna shuru kar diya jo keh rahe hain rehne do ye sab kuch, let's just focus on careers, let's just make money and let's just live our lives. तो वो भी हमारे यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरह की है ही नहीं. So, क्या हमने एक्चुअली बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करके अपने से छोटी बच्चियों को लड़कियों को डरा दिया है भैया?
1: किस चीज से डरा दिया?
0: The whole concept of marriage, because उसके साथ फिर ये भी है, वो भी है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के आजकल इतने इश्यूज हैं कि दे आर सॉर्ट ऑफ
1: मैरिज. For me, marriage is partnership, and I would tell my daughter that you get married when you find a few things in that man that you're getting married to. And मैं तो बहुत ही different school of thought से हूँ. मैं उस पर भी believe नहीं करती कि जैसे ही बच्ची 18 की होगी तो जैसा रिश्ता आएगा मैं उधर ही. Having said that, I'm not saying I'm against marriage early years jo marriage hoti hai, agar aapko koi acha match milta hai aap zarur kare,
0: but not underage.
1: Lekin I think that a girl needs to study. You need exposure of the right kind, travel se, bahir padhne se, ya achhi university jo hamari Pakistan mein itni achhi universities hain, aap wahan jaye, wahan padhe, aur uske baad ye bacche itne self aware hain, इनको खुद पता है इन्होंने क्या करना है, लेकिन इनको बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए. बस वो साथ साथ इनके रहें, एज अ फ्रेंड बन के रहें, बिकॉज वो अगर गाइडेंस नहीं होगी तो यही जनरेशन है जो कि हो जाएगी. क्योंकि ये इनका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने अकोमोडेट बहुत किया है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी ईगोज इन्फ्लेटेड है. सो
0: डिटैचमेंट में फिर बहुत जल्दी चले जाएगी,
1: इनकी डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी. तो इनको इनके जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इनका क्वेश्चन है उस पर काम करना बहुत जरूरी है. सो एंड जो होता है ना, जो रेड फ्लैग्स हैं वो आप खुद डिफाइन करें, नॉट थ्रू सोशल मीडिया. खुद बताएं कि क्या है.
0: राइट. और इसी नोट पे अगर हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, बट एक चीज मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा सा एड ऑन कर दें. कंपैरिजन कल्चर हमने शुरू में भी बहुत बात कर ली कि वो हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं, एक बच्चा ऐसा है, दूसरा बच्चा ये है, इतने कजन के इतने ग्रेड आए थे, उसके क्यों नहीं आए, और अब वही मेरी बर्थडे ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई थी, उसकी वो थी, वो वहां ट्रैवल करें, वो नहीं है, फिर ड्रामास कॉन्टेंट. प्लीज मॉडरेशन, प्लीज बॉटल को बंद करना जो है वो समझ लें. इन द वेरी एंड, इफ यू वुड लाइक टू गिव एनी सजेशन, एनी पीस ऑफ एडवाइस टू द फॉलोअर्स,
1: आई वुड से वन थिंग दैट बी योर सेल्फ एंड डोंट बी स्केर्ड ऑफ हाउ यू विल बी परसीव्ड. पीपल हु लाइक यू, पीपल हु अप्रिशिएट यू, यू विल अट्रैक्ट देम एनी वे. एंड फॉर गर्ल्स स्पेशली आई ऑलवेज से दैट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. You have to know how to earn your own money. Not because you're going to be egoistic or you're going to be harsh, but because you want that dignity throughout your life. You want to have that dignified, structured life for yourself.
0: Right. Thank you so much, Maria. What a beautiful note to end the episode. और ये बहुत जरूरी है. हम यही कहते हैं कि अगर आप में ये नॉलेज नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है, खुद वो इंडिपेंडेंस नहीं है, तो आपको कोई करोड़ों लाके भी दे देगा ना, आप उसको वेस्ट कर दोगे. आपको नहीं पता कि क्या है. तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी वे विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज. थैंक यू वंस अगेन.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 03313994941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो कुचरता ददग ज्वानको पवख बानी गम उनकलेशी न प रारवान वक की दग ज्वान की स्तासु दखाइस द खराबे दो बाइस जुड़ दी। ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीस पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही। और ये वाज दाना द दग दानो चकम दागु नदी अगा हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और दानु दागुना प मुकमल तो गबानी खत्मई। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई। द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

फार्मूला, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुमचे प सलूर सो रुपये बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमचे द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुमचे प सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और यवाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमचे सिर्फ और सिर्फ सलूर उस्पो की दनन दनन सासु दाने और दानो दागुना प मुकम्मल तोगबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

एक हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूँ खुश खबरी स्तासु जुन स्तासु का रोजगार और स्तासु खुशाली द खराबी शुविदी नो शांतिया प्रिग दे और पारा जान लवाखली पेलिस केवर सिर्फ कॉम पातिक द बेहतरीन मेडिसन्स ना तैयार शुविदी और द इंसान वजुत्ता बेशमेर फायदे वरके लका गाड़ी की जलखराबे दिल सरबाने बोझ पर नारबाने जलखराबे दिल गुर्दो बाने गुर्दो की बार बार काने की दिल गुर्दो की बार बार शुगर की नवरत लल या खूब बेइंतहा डेर ज्यादा ल खुलेला त्रवी त्रवी और खास खा उबरात लल बार बार कबज जुड़ी दिल या बार बार खेटा खुराक नबात लल खेटा द्रन द्रन लगी दिल दमेदी दर्द हो या दमेदी आग दर्द चिदागी पोजमाने बिउशिराजी चाबाने बार बार बार बार रिस्की अड्रकी जलस वजे दिल दमेदी एसिडिटी ज्याते दिल पो खेटा बानी नारवा दर्द रात लल या पखेटा बाने दर्द रात लल द माशुमानो पखेटे की चिंजिकी दिल द खुराक लल खुल बार बार पखे दिल विन रात लल या इयर रात या जड़ा रातल जलद्रजिदल लग सासा की तकीदी ब्यामल हीरवी स्तरगी पे तूरी तूरी कीगी गुस्सा चालडीर नखते नखते वी दखले तरउगुरजीगी दजान खबरदार नवी दखल को खबर उरी पखपलवाने दखलेना इस किस्मा खबर निशविस्ते पो पो वजुदबाने गर्मी रातल खोला रातल औदासी पो टूल वजुदबाने आसाबी दर्दुन रातल औ आग मसली चिता सुता द मेदीना वाला ऋषिविदी दागे द पारा बेलर वर्सी रप्त निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल स्टोर नवाली द मेदी और द मेदी नवाला लिशी भी मुकम्मल तो गवानी खत्म की नबिया इंतजार मकवई द मेदी द पारा बेलडोना गैस के वर सिर्फ जट गई नुम याद साथ ही बेलडोना गैस सिर्फ बेलडोना गैस के वर डोना गैस के वर सिर्फ अस्सलाम वालेकुम जैम डॉक्टर हैदर अली मुमन कतासु यास्तासु पकूर के सोक दता देर परेशान दी देर इंजेक्शन ओ लगोली देर ट्रिपुने ओखे जोल देर डॉक्टरान लाडल खुतर उसाद अगीद वजुद ना ओरक नशु जमाद हस्पताल अजमुद शिवे फार्मूला नुम याद साते बलडोना सिर्फ बलडोना गैस के वडोना गैस के वर सिर्फ अस्सलाम वालेकुम जैम डॉक्टर हैदर अली मुमन कतासु यास्तासु पकूर के सो

मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल मन होम्योपैथिक जनरल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू के और दोपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मोमन जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई होम्योपैथिक द्वार ना उम्मीद शुरू बीमारानों द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल बल्कि द हैदर जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी सुविधा कतासु

देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हूँ द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुन ना उम्मीद सुई बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासु